0: झगड़ने की क्या बात है यार?
1: पहले तो पहले भवरे जैसे पास पास मंडरा है,
0: बड़ा है।
1: फिर बिजी हूँ ये कहकर तुमको वो टक्कर समझा करो डार्लिंग, आज बहुत काम
0: मेरी भी तो सुनो।
1: दूर हुआ तो क्या, दिल में तुम्हारा नाम है।
0: वाओ।
1: जिस चेहरे पर मरते हैं वो बोरिंग हो जाए।
0: नॉट लिसनिंग टू
1: यू। कुछ ही दिन में नजरें इनकी इधर उधर
0: मंडरा,
1: प्यार से जिंदगी नहीं चलती।
0: ओके आई एम नॉट विद हर।
1: इंटीरियर डेकोरेशन का कोर्स क्यों नहीं करती?
0: ओके दैट्स इट।
2: Ikuti kami di Facebook dan Instagram Stro FM Sehati Sejiwa.